स्कूल हमें चमक दी ठीक हुआ के सीखो चोरा में सीखो चमक दी स्कूल हमें